0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ताजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ और हमारे प्रोड्यूसर अली शेर अलीयव। इस घंटे की मुख्य खबर है। ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति उमाली रहमान ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दौरा किया। से 14 मई तक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्राचीन होटल ताजिक फारसी भाषा और मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यता की उपस्थिति का आधार आयोजित की जाएंगे। यूरोप और मध्य एशिया के लिए 45वीं एफआओ क्षेत्र सम्मेलन दुशंबे में अपना काम शुरू करेगा और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। रामाई को ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति राष्ट्र का नेता इमाम अली रहमान ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजकीय यात्रा के दुशंबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति को ताजिकिस्तान गणराज्य के सर्वोच्च विधानसभा की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ताजिकिस्तान गणराज्य के सर्वोच्च विधानसभा की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ताजिकिस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय के पहले उप प्रमुख और अन्य अधिकारियों द्वारा ले जाया गया। इस यात्रा पर ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मौली रहमान के साथ विदेश मामलों के मंत्री, विदेशी संबंधों पर ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के सहायक और कई संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख शामिल है। 10 से 14 मई 2024 तक ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति उमाली रहमान के समर्थन और मार्गदर्शन से ताजिकिस्तान गणराज्य के सरकार के तहत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षा के लिए एजेसी प्राचीन होटल ताजिक फारसी भाषा और मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यता की उपस्थिति का आधार शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेंगे। सम्मेलन में देश के अंदर और बाहर से वैज्ञानिक, शोधकर्ता, इतिहासकार, प्रतिवादी और अतिथि भाग लेने और होटल के इतिहास ताजिक फारसी भाषा के निर्माण में इसके भूमिका और क्षेत्र प्राचीन सभ्यता पर प्रस्तुतियां और साक्षात कर देंगे। सम्मेलन कार्यक्रम में वैज्ञानिक बैठकें, ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। कार्यक्रम के अनुसार 11 मई को खातलोंग क्षेत्र के बुख्तार शहर में प्राचीन होटल ताजिक फारसी भाषा और मध्य एशिया के प्राचीन सभ्यता का आधार शीर्षक के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किए जाएंगे। चार जून से 23 अगस्त 2024 तक हर हफ्ते शनिवार और रविवार को देश के शहरों और जिलों के सांस्कृतिक के दिन दुशंबे शहर के पार्कों में ताजिकिस्तान गणराज्य के स्वतंत्रता की 45वीं वर्षगांठ के लिए आयोजित किए जाएंगे। ये माना जा रहा है कि सांस्कृतिक दिन युवाओं के झील, सांस्कृतिक और मनोरंजन पार्क सदर दिन के नाम पर सांस्कृतिक और मनोरंजन पार्क, अबुल खोसिम फिरदौसी के नाम पर सांस्कृतिक और मनोरंजन पार्क और राजधानी के अन्य सांस्कृतिक पार्कों में आयोजित किए जाएंगे। हम आपको याद दिलाते हैं कि 16 दिसंबर 2025 को ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मौली रहमान के मजलिस ओली को राज्य के स्वतंत्रता की 45वीं वर्षगांठ को समर्पित संदेश के प्रस्तुति के दौरान 2024 को विकास और रचनात्मक कार्यों के विस्तार और राष्ट्रीय पहचान और कला को मजबूत करने का वर्ष घोषित किया गया था। یوروپ اور مادیا شی کلی سنیو گراشتر کی کادیا اور کریشی سنگت ہان کے پینٹل سوینگ کشیتر سمیلان دوشنبے می اپنا کام شروع کرینگا مادیا شی کے دیشو کے اتیاس می پالے بار یہ نے بڑے پیمانے پر ایف او فورم تاجکستان می اوجیت کی جا رہا ہے جو گنا تنتر کے بڑھتے انتراشتی ادھیکار اور ویشوا کا سٹ ویکا سے جے دیکھو برہوا دینے میں ای ایس کے سکریا بھومی کا سنکیت دیتا ہے سمیلان پندرہ مہی تک چلیں گا اور ایس میں پچیس سدسیہ دیشو اور پرویک شک دیشو کے 525 سے ادھیک پرتی باغیوں کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 20 انتراشا اور کشیتر سنگتانوں کے پرتینیدھی شامل ہوگے پھر اس نے والو یہ تستا یہ سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

जश्न खुद कहीं जोश में देखने वाला घुंघटे में चलता है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला अरे होश न खुद

ही और कोई साथ नहीं और दूर तक कोई किनारा भी नहीं गत्ता है रात है कश्ती में खे रहा पर वो खुदा रहीम बिना फजल के नहीं।

साथ आए ही हम तेरे कदमों के नीचे बांध गए खाक ही हम मजहबी आशिकी में कैसे ये वाजिब है देखें तेरा आलम व तुझे न देख

लतीफा एक तालीम है गौर से उसको सुनो मत बनो उसके मोहरे जाहिरा में मत बनो संजीदा नहीं कुछ भी लतीफे बास के लिए हर लतीफा सीख है एक आखिलों के लिए।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ताजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ और हमारे प्रोड्यूसर अली शेर अलीयव। इस घंटे की मुख्य खबर है। ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति उमाली रहमान ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दौरा किया। से 14 मई तक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्राचीन होटल ताजिक फारसी भाषा और मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यता की उपस्थिति का आधार आयोजित की जाएंगे। यूरोप और मध्य एशिया के लिए 45वीं एफआओ क्षेत्र सम्मेलन दुशंबे में अपना काम शुरू करेगा और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। रामाई को ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति राष्ट्र का नेता इमोमाली रहमान ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजकीय यात्रा के दुशंबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति को ताजिकिस्तान गणराज्य के सर्वोच्च विधानसभा की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, ताजिकिस्तान गणराज्य के सर्वोच्च विधानसभा की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, ताजिकिस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री, ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय के पहले उप प्रमुख और अन्य अधिकारियों द्वारा ले जाया गया। इस यात्रा पर ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम उमाली रहमान के साथ विदेश मामलों के मंत्री, विदेशी संबंधों पर ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के सहायक और कई संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख शामिल है। 10 से 14 मई 2024 तक ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति उमाली रहमान के समर्थन और मार्गदर्शन से ताजिकिस्तान गणराज्य के सरकार के तहत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षा के लिए एजेसी प्राचीन होटल ताजिक फारसी भाषा और मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यता की उपस्थिति का आधार शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेंगे। सम्मेलन में देश के अंदर और बाहर से वैज्ञानिक, शोधकर्ता, इतिहासकार, प्रतिवादी और अतिथि भाग लेने और होटल के इतिहास ताजिक फारसी भाषा के निर्माण में इसके भूमिका और क्षेत्र प्राचीन सभ्यता पर प्रस्तुतियां और साक्षात कर देंगे। सम्मेलन कार्यक्रम में वैज्ञानिक बैठकें, ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। कार्यक्रम के अनुसार 11 मई को खातलोंग क्षेत्र के बोख्तार शहर में प्राचीन होटल ताजिक फारसी भाषा और मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यता का आधार शीर्षक के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किए जाएंगे। चार जून से 23 अगस्त 2024 तक हर हफ्ते शनिवार और रविवार को देश के शहरों और जिलों के सांस्कृतिक के दिन दुशंबे शहर के पार्कों में ताजिकिस्तान गणराज्य के स्वतंत्रता की 45वीं वर्षगांठ के लिए आयोजित किए जाएंगे। ये माना जा रहा है कि सांस्कृतिक दिन युवाओं के जहल सांस्कृतिक और मनोरंजन पार्क सदर दिन के नाम पर सांस्कृतिक और मनोरंजन पार्क, अबुल खोसेम फिरदौसी के नाम पर सांस्कृतिक और मनोरंजन पार्क और राजधानी के अन्य सांस्कृतिक पार्कों में आयोजित किए जाएंगे। हम आपको याद दिलाते हैं कि 16 दिसंबर 2025 को ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम उमाली रहमान के मजलिस ओली को राज्य के स्वतंत्रता की 45वीं वर्षगांठ को समर्पित संदेश के प्रस्तुति के दौरान 2024 को विकास और रचनात्मक कार्यों के विस्तार और राष्ट्रीय पहचान और कला को मजबूत करने का वर्ष घोषित किया गया था। यू اورو بورمادیا شی کلی سنیوگراشتر کی کادیا اور کریشی سنگتان کی پینتلی سوینگ کشتر سمیلان دوشنبه می اپنا کام شروع کرینگا مادیا شی کی دشو کی ایتیاس می پالی بار ایس نے بڑے پیمانے پر اف او فورم تاجکستان می اوجیت کی یا جرہ ہے جو گنا تنتر کے بڑھتے انتراشتری ادھیکار اور ویشوا کا سٹ ویکاس جے دیکھو برہوا دینے میں ایس کے سکریا بومی کا کا سنکیت دیتا ہے سمیلان 15 مہی تک چلینگا اور ایس میں 25 سدسیہ دیشو اور پرویک شک دیشو کے 525 سے ادھیک پرتی باگیوں کے ساتھ ساتھ لگ بھاگ 20 انتراشا اور کشیتر سنگتانوں کے پرتینیدے شامل ہوگے پھر اس نے والو یہ تستہ اس سمچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

लतीफा एक तालीम है गौर से उसको सुनो मत बनो उसके मोहरे जाहिरा में मत बनो संजीदा नहीं कुछ भी लतीफे बास के लिए हर लतीफा सीख है एक आकिलों के लिए।

तुमसे बारी हुई है, तौबा के रखने के मुझ में जगह नहीं है, तो तय है कि तौबा को दिल से निकाल दूं, जन्नत की जिंदगी से भी तौबा कैसे करूं।